मान मैं तू मेरो खालसा से ही, खालसा मेरो स्वार्थ से ही। आ खालसा मेरो स्वार्थ से ही।

जेवा एक पार ना लेही। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा वर्णत सुध। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा वर्णत सुध। या मैं रंच न मिथ्या पाकी। मैं झूठ नहीं कह रहा, एक जरा पर भी, एक छिन पर भी इहदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौं खा के कहना। या मैं रंच न मिथ्या पाकी।

शिवा का मतलब शिव जी नहीं है। शिव शिव करते जो नारे आवे बल चढ़े डरू टमकावे बल की जून च पैंदा है। मां माई की पूजा करे नरसे नार होए औतरे ओ नार की जून च पैंदा है। तू कही आग तो आनी मुक्की बरिया का छपानी। इस वास्ते हिंदू अन्ना तुरकू काना दोवा ते ज्ञानी सियाणा जेड़ा एक तो बिना दूजे नूं मनदा ही नहीं। शिवा का मतलब शिव जी नहीं, शिवा का मतलब पावन मेनू वर दो पावन। शिवा मेले शुभ शुभ वर मेनू बख्शो। केड़ा शुभ कर्म।

न जाए ना दुख पाए ना मेरा तेरे दुश्माए। गुरमति शांत मसे सरी, गुरमति शांत मसे सरी, शब्द चीन फिर

ते जन कब हूं नहारे, ते जन कब हूं नहारे, ताल जो जाने पाशा, ताल जो जाने पाशा, ते जन कब हूं नहारे, सो कदे ना।

0: சொல்லுங்க செங்கல் சொல்ல
1: खिलौना अस खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी शस्त्रां का धनी अस खिलौना मेरा तो नाम बबिंद सिंह अस खिलौना सोडी राय।

आन को दान न लागत निको, आन को दान न लागत निको, आज भले इन्हीं को दियो, आज भले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और दियो सभी को, मोगरे में मनते तनते सिर लो धन है सभी के लिए जब जीते इन्हीं के प्रसाद इन्हीं के प्रसाद सुदान करे आज आग टरे इन्हीं के प्रसाद इन्हीं की कृपा फुन काम भरे इन्हीं की कृपा फुन काम परे इन्हीं के प्रसाद सब जाले इन्हीं के प्रसाद सब जाले इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे

सौ गणिए सब ते उच्चा। अपने आप जेड़ा नीवा बना के गरीब बना के रखे, वाहगुरु वालों उन्हू दात किन्नी मिलती है, एदा प्रमाण भाई गुरदास जी देंदे अपनी बाणी अंदर कहिंदे, दाना होए अनार दा, अनार दा दाना। अपने आप नू निम्रता विच उसने अपने वजूद नू निम्रता लिया के मिट्टी च रोलिया, इन्ना गरीब बन गया मिट्टी च रुल गया। वाहगुरु ने उसनू दात बख्शी भाग लाए, भाई गुरदास साहब की बाणी, दाना होए अनार दा, होए धूड़ तूड़ी विच तसे, फिर होए बिरख हरियावला, हरियावला बिरख बन गया, लाल गुलाला फुल विगसे, एक बिरख सहस फल, फुल फल दे मन अंदर वसे, एक दू दाने लख होए, एक दू दाने लख होए, फुल फल एक दू एक सरसे, ज्यों ज्यों लइण तोड़ फल, त्यों त्यों फिर फलिए हसे, निव चलन गुरु मार्ग दसे, निव चलन गुरु मार्ग दसे। होए वड़ेवा जग विच, वड़ेवे दा बीज उसका प्रमाण देंदे होए भाई गुरदास कहंदे, होए वड़ेवा जग विच खे नाल रलाया, वड़ेवे दे बीज ने अपना तन मिट्टी च रोलिया, की होया, होए वड़ेवा जग विच बीजे तन खे नाल रलाया, बूटी हो कपाह दी, कपाह दी बूटी बन गया, टींडे हस हस आप खिड़ाया। इथे ही बस नहीं, अगे इम्तिहान होर पै गया, दो मिल वेलन वेलिया, वेलने विच भी वेलिया गया वड़ेवा, दो मिल वेलन वेलिया, लू लू कर तुंब तंबाया, तिंजन पिंज उड़ाया, तिंजन पिंज उड़ाया, कर कर गोरी सूत कटाया, तन तन खुंब चढ़ा के दे दे दुख तुआए रंगाया, फिर कैंची कट्टन कट्टिया, फिर सूई धागे जोड़ सवाया, लज्जन कज्जन होए कजाया। ए रुमाल बन के गुरु ग्रंथ साहब जी दे सुभायमान हो, देखो किड्डा वड्डा भाग गुरसिख दे सीस ते दस्तार बन के सज गया। क्यों? इस तरह बाबा दीप सिंह ने अपने आप नू साध सिंह जी इन्ने निम्रता विच लै गए, कहिंदे पुरजा पुरजा कत मरे कब हुन छाके के, जाता प्रेम खेलन का क्या, दिल धर तली गली के का, कित मार्ग पैर धरी के फिर दीजे कान न चुके, जिस मार्ग

धार अणियर कमंद कोरड़ा, तमक धार अणियर कमंद कोरड़ा, पंज शस्त्र परवान, पंज शस्त्र परवान, पंज शस्त्र परवान।

खड़ग तुपत तबर अरतीन शैव सरोही शैथी ये है हमारे तीर। तीर तू ही सैथी तू ही, तीर तू ही सैथी तू ही।

ਸੋ ਇਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਇਹ ਮਾਨਸ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਐਮ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਮੈਂ ਮਾਨਸ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਬੀਰ ਸੇਸ ਨਾ ਇਹ ਮਾਨਸ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਨਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਖੜੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਕਰੰਟ ਹੈ ਵਿਚ ਇਸ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਹੈਪਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਮਾਨਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਦਰ ਇਟਸ ਮੇਲ ਨੋਰ ਇਟਸ ਫੀਮੇਲ, ਨਾ ਇਹ ਮਾਨਸ। ਆਫਟਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਟਰੂ ਸੈਲਫ ਕਬੀਰ ਸੇਜ਼, ਨਾ ਇਹ ਮਾਨਸ, ਨਾ ਇਹ ਦੇਵ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਤੀ ਕਹਾਵੇ ਸਿਓ, ਕਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਤੀ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਜਤੀ ਕਹਾਵੇ ਸਿਓ, ਨਾ ਇਹ ਜੋਗੀ, ਨਾ ਔਧੂਤਾ, ਨਾ ਇਸ ਮਾਏ, ਨਾ ਕਹੂ ਪੂਤਾ, ਮੇਰੇ ਟਰੂ ਸੈਲਫ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਮਾਏ, ਨਾ ਕਹੂ ਪੂਤਾ, ਜੋ ਕੁਸਚਨ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਜ਼ਡ ਦੈਟ ਕੁਸਚਨ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੇਅਰ ਡਜ਼ ਇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਬਾਡੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਇਸ ਮਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸ ਵਾਰ ਐਸ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਵਸੇ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੈਲੈਕਸੀ ਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਤੰਗ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਕਹੂ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰਹੀ ਨਾ ਉਦਾਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੀਅਲ ਸੈਲਫ ਨਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰਹੀ ਨਾ ਉਦਾਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਰਾਜ ਨਾ ਭੀਖ ਮੰਗਾਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਭਿੱਖ ਮੰਗਾ ਬੈਗਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾ ਰੱਖ ਤੂੰ ਰਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ, ਆਈ ਐਮ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਸਮ ਪੀਪਲ ਸੇ ਦੈਟ, ਇਫ ਵੀ ਆਸਕ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ, ਦੇ ਵਿਲ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਪਰ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ, ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨੀਦਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਏ ਬਾਡੀ ਨੋਰ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਲੱਡ, ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾ ਰੱਖ ਤੂੰ ਰਾਤੀ, ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਨਾ ਇਹ ਖਾਤੀ, ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਫਾਲਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਨਟਰੂ, ਇਲੂਜਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਭਨਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਨਾ ਇਹ ਖਾਤੀ, ਨਾ ਇਹ ਤਪਾ ਕਹਾਵੇ ਸ਼ੇਖ,
ना ए कोई तपा है, ना ए शेख है, ना ए जीवे ना मरता देख, ना ए जींदा है ते ना ही इसनु किसी ने मरता देखा है। वो आप ही जानता फिर वो की है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, वो मिस्ट्री ऑफ द मिस्ट्रीज है, उस मिस्ट्री को जान नहीं सके। कहते ना ए जीवे ना मरता देख, इस मरते को जे कोई रोवे, कहते जो कोई बंदा मर जाता ना तो वह सोचते हैं कि यह मर गया, कहते उन्होंने नहीं पता कि जो चीज पहला जिंदा सी वह हूं भी उतना ही जिंदा है, सिर्फ जड़ा मकान सी वह टह गया है, पर मकान दे विच रहन वाला होर मकान चले जाएगा, जो होर मकान चले जाएगा, मकान बदलिया जाएगा, लेकिन मकान जो जिंदा सी कहते रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो, तो हूं भी जिंदा है उतना ही, किसी और मकान चोएगा ना। ए जीवे ना मरता देख, इस मरते को जे कोई रोवे, जो रोवे अपनी पत खोवे, कहते वो अपनी पत खोदा है, तो वो रोई जा रहा है कि वो मर गया पर वो जिंदा है, वो तो उसे दी तो हासो ही नहीं होनी है, जो रोवे सोई पत खोवे। अखीर कबीर साहब कहते हैं गुरु प्रसाद मैं डगरों पाया, फिर गुरु की गल आ जाती है कि गुरु की कृपा दे नाल ए राज ए रस्ता मैनु प्राप्त होया, तो गुरु नु पता है मैं की हां, और गुरु ही ए सीक्रेट रिवील कर सकता है, और गुरु ही इस सीक्रेट नु रिवील करन दे दरम्यान जड़े जड़े ऑब्स्टेकल्स हन, जड़ियां मुश्किलातां हन, उन्हां नु टैकल कर सकता है। कहिंदे हन गुर प्रसाद मैं डगरों पाया, गुरु की कृपा दे नाल कहिंदे ए अपना रियल सैल्फ रियलाइज करन तो बाद की हो गया, जन्म मरण दो मिटवाए, जन्म मरण मेरे दोनों खत्म हो गए, क्योंकि रियल सेल्फ ना जमदा है ना मरदा है। जितनी देर तक मैं अपने आप नूं शरीर समझदा हां, शरीर दिया इच्छावां हन, वासनावां हन, तृष्णावां हन, मोह ममता है, उतनी देर तक मैं आंदा हां और जाना हां। जदों रियल सेल्फ असल आपा चीनिया गया, असल आपा पहचानिया गया, कहिंदे जन्म मरण दो मिटवाया, फौरन कहिंदे मेरा जन्म मरण खत्म हो गया। तो अखीर च आखदे हन कहो कबीर ए राम की अंश, ए उस प्रभु दी ही अंश है, जिस तरह समुद्र दे विचों निकालिया होया एक पानी दा ड्रॉप समुद्र दा ही हिस्सा है, इसे तरह ए साडे शरीरां दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु दी सुपर कॉन्शियसनेस दा एक ड्रॉप है, लेकिन जिसनु इस शरीर दे विच आन करके एक वहम हो गया कि मैं आ हां, जदों इस वहम नु तोड़ दिता जाएगा उदों ए जो है जिस दा है ओही बन जाएगा, अते उसे दिया तमाम क्वालिटीज जो हैं वो इस दे विच आके मौजूद हो जाएंगियां। आज दे कीर्तन दे विच आप जी दी सेवा च ए अर्ज कीती है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी का गुरपुरब मनाना सी, ते जिस रेफ जिस लड़ी च कीर्तन चल रहा सी उसे लड़ी च ही इसनु मैं पेश करना चाहता सी कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपना सैल्फ रियल सैल्फ डिस्कवर करन तो बाद अपनी बाणी आप उचारी है, उस बाणी दे विचों पता लगता है कि जो अपना रियल सेल्फ डिस्कवर कर लेंदा है ना वो मर सकता है, ना उसनु पेन दिती जा सकती है, ना उसनु खत्म कीता जा सकता है, ना उसकी कोई जात है, ना आन जान वाली चीज है। ओ गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी अकम्पलिशमेंट नु कह रहे हैं कि मैं धन भागी हाँ कि गुरु ने मेरे उत्ते कृपा की है, मेनू मेरा भरम दूर कर दिता है और मेनू दस दिता है कि मैं की हाँ। और गुरबाणी का मुख आशा टारगेट सिर्फ यही है कि असा भी अपनी लाइफ दे विच विच वाहिगुरु कृपा करे, ये जानना है कि असी कौन। अज आप जी गुरु अर्जन देव जी का गुरपुरब मना रहे हो तो गुरु अर्जन देव जी का एक सुनेहा लैके जाओ, गुरु अर्जन देव जी सानू सारिया नू एक साडे अंदर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो क्वेश्चन ये है सुनो रे तू कौन कहां ते आयो। इंसान सुन तू कौन है, तेन पता है कितों आया है, तेन पता है तेन कुछ नहीं पता, इस क्वेश्चन नू इतना बधाना चाहिदा है अंदर, दिन रात इस उते मेडिटेट करना चाहिदा है, दिन दे विच कितनी दफा इस थॉट नू लेना चाहिदा है कि मैं कौन हाँ, मैं कौन हाँ। जो ये सवाल रेस करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, पहला तो सवाल परिपक्व होना चाहिदा है,
जब सवाल परपक हो जाएगा कि मैनू पता ही नहीं मैं कौन हाँ, उदो बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। तो मैनू ये नहीं पता कि मैं कौन हाँ, तो बाकी तो सारे का सारा कुछ व्यर्थ हो जाता है ना, अर्थहीन हो जाता है। जे ये ना पता हो मैं कौन हाँ, जे ये नहीं मैनू पता कि मैं कौन हाँ, तो फिर जे मेरे नाल दे आले दुआले दे हन उन्हां दा मैनू की पता लग सकता है कि यह कौन हैं, फिर उत्थे मैं किवें कह सकदा कि आ मेरा आ है, आ मेरा आ है, आ मेरा आ है, जब मैनू ही नहीं पता कि मैं कौन हाँ। इस सवाल नू इतना बधाना चाहिदा है कि एक दिन तकलीफ बन जाए और उस दा हल लभण दे वास्ते फिर इंसान उस नू ढूंढदा है जिसनू इस सवाल दा पता है, जवाब पता है, जवाब उसे नू ही पता है जिसने सानू बनाया है। उही अकाल पुरख वाहिगुरु गुरु दे रूप दे विच आके सारे दा सारा कारज फिर वो आप करदा है। तो इस तो एक सिट्टा यह निकलता है कि अगर असि अपने सैल्फ नू जानना चाहते हाँ तो फिर सानू गुरु धारण की जरूरत है, गुरु वाले होने की जरूरत है। असि अपने आप नू सारे सवाल पूछिए कि किस की असि अपने जीवन दे विच ए जिज्ञासा दे नाल गुरु महाराज जी नू गुरु धारण किया है, अपने आप नू सरेंडर किया है, अपने आप नू गुरु दे चरणां च हैंड ओवर किया है कि आ मैं हाँ। जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार, आप जी की इच्छा है मैनू जिंदा रखो, मैनू मारो, मैनू जो भी मर्जी बना दो, जो भी मेरा मर्जी करो, ओ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा, मैं अपना सारा कुछ अपना मन अपना तन अपना धन अपना सब कुछ अर्पण करन तैयार हाँ, पर मेरे ते तरस करो कि मैनू ए दसो गुरचरण लाग हम बिनुता पूछत कह जी उपाया। ए जी क्यों उपाया है, किवें उपाया गया है, कौन है, है? कवन काज जग उपजे बिन से कहो मोहे समझाया, ए गुरुदेव मैनू समझाओ ए कौन है, ए क्यों आउंदा है, क्यों जांदा है, क्यों जमदा है, क्यों मरदा है। जदों गुरुदेव कृपा करके ए समझा दिंदे हन उस दे टंग हन उस दीआं विधियां हन जिन्हां दी की अगले कीर्तना च विचार कीती जाएगी कि किवें किवें समझांदे हन, ते उदों जाके जदों समझ आ जांदी है उदों आ अवस्था बन जांदी है कि नानक गुर खोए परम पंगा हम ओए मिल होए एक रंगा। हुण गुरु अर्जन देव जी कहंदे हन मैं ते परमात्मा एक हो गए हां, दो नहीं रह गए। असी हाले गल नहीं कह सकते, दम नाल नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि साडे अंदर हेजिटेशन आएगी कि हाउ कैन आई बी गॉड, मैं ते एक छोटा जिहा हां, सिनफुल हां, कर्मी हां। महाराज जी कहते जिस दिन अपने रियल सैल्फ नू लभ लोगे ना, कहते उन्हूं को पाप लगता ही नहीं है, वो उत्थे पाप है ही नहीं, पाप उनका उस लेप ना लगे, ये उपर उपर उपर उपर दियां तहां हन, लेकिन जो असली तुसी हो उत्थे पाप लगता ही नहीं है, वो पापी हो ही नहीं सकता, वो परमात्मा है, उसनू पाप किवें लग सकता है। इस करके कहते हैं ना ब्रह्म ज्ञानी ना पुन लगता है ना पाप लगता है, वो दोनों चो मुक्त हुंदा है। सो कीर्तन दा समापत है, गुरु अर्जन देव जी के गुरपुरब मनाने दे विच असीं यह सबक लेना है कि वो ये शहादत तां कर सके, इतने तसीहे तां सहार सके, क्योंकि वो इस बुलंद अवस्था के मालक सन कि वो अपने आपे नू जानदे सन कि ए बेचारे मेरे आपे नू की कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। परम दे विच वो लोग सन, महाराज जी नहीं सन, तकलीफ च वो सन, महाराज जी नहीं सन। तो गुरमत दी साइंस है कि अपने आप नू पूर्ण तौर ते फ्री, पूर्ण तौर ते सुखी, पूर्ण तौर ते आनंद, पूर्ण तौर ते जो अनुभव करना है वो तां ही हो सकता है जे साडे अंदर ये इच्छा पैदा होवे कि गुरु दे सिख असी इस करके हाँ क्योंकि असी अपने आपे नू लभना है। सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछाने, ओही ग्रिस्ती ग्रिस्ती है जिसने अपने आप नू पहचानिया, नहीं तो घरां दीआं घुम्मण घेरियां दे विच वक्त जाया कर रहे हो। ओही उदासी उदासी है जिसने अपने आप नू पहचानिया, नहीं तो डेरे डूरे ते बथेरे लोग बनाए जाते हैं, उस दे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। सो अपने आप नू पछानना साडी जिंदगी दा मुख फर्ज है, यही साडी जिंदगी दा मिशन है। अगर असी अपने आपे नू पहचाने तो बिना इस जीवन चो चले जावांगे तो फिर असी फिर अगेन घुम्मण घेरियां दे विच पै रहांगे। ए लाइफ ए फॉर्म ए अपरचुनिटी है जिस दे विच असी अपनी रियलिटी नू जान सकते हैं, सच नू जान सकते हैं। आओ एक दफा इस नू गाओ उपरा।

आशिक नसन दिल दे बेड़े चानन होसी, दिल दे बेड़े चानन होसी, दूर चना दे चरना निश्चय करना, दिल दे बेड़े चानन होसी।

sewa perbankan tentang hidup dunia di dunia di pembaka jalur jahat di seluruh televisi milik Abdi Guru Darbar di Ushad di Pariye Ate Hun Abdi Amrit Mune Kirtan Raga de Vich Guru Darbar Sahib di Marja Adar Sahib Guru Darbar Sahib di Marja Adar Sahib Sarvan Kita hai Sultanta de Aao Ante de Vich Sarvat Mai Bhai Kitne Guru Chanda Ch Baithe Ho Choriyan Ki Ardaas Binti Chaudhari Karni Hai Sadhu Dadya Ki हे काल पुरख सर्व शक्तिमान परम पिता परमेश्वर कृपा करो साढ़े छोरिया अपने पवित्र नाम की खैर पाओ आओ जपो सारे लवाओ हाजिया कोई उसना खाजना जाए।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आपने इस पावन पवित्र शब्द दे विच पैरो महला पहला दा शब्द है जो विचार पेश कर रहे हैं, अंधले क्या पाया जग आए। इस पंक्ति तो यह सिद्ध हुंदा है कि इंसान ने इस जन्म दे विच आके कोई खास वस्तु प्राप्त करनी सी, कोई बहुत उचेची चीज इसने हासिल करनी सी। सिर्फ वो इसका मिशन सी, इसका पर्पस। अंदले क्या पाया जग आए, पाप के इथे आके कुछ पाना सी। महाराज जी ने पूछिए, सच्चे पातशाह, वो वस्तु जो असी पानी सी, वो किथे है? जो असी पानी सी वो वस्तु है किथे? तो गुरु साहब उसका जवाब देते हैं, कहते हैं

वस्तु काया दे अंदर है। अते जेड़े काया दे अंदरों उस वस्तु नू नहीं पहलदे, नहीं ढूंढदे, कहिंदे हो अति मूढ़ हन, अति मूर्ख हन, अते बेताले, उन्हां दी जिंदगी दे विच कोई भी सही चाल नहीं। बेताल लोग हन, मूढ़ लोग हन, मूर्ख लोग हन। सो इस स्टैंडर्ड दे नाल, इस मेजरमेंट दे नाल, इस गेज दे नाल सारी सोसाइटी मूर्ख बन जाती है, क्योंकि बाहर पहलदी है। सुगुरु बाबा जी की तालीम सानू समझा रही है कि इस जन्म दे विच तुसी कुछ पाण लई आए सी, अते ओ जो वस्तु है ओ तुहातों दूर नहीं। अगर तुहाडा कुछ भी जिंदगी च नुकसान हो गया है, कुछ भी तुहाडा खो गया है, नो मैटर हाउ मच यू फील दैट यू आर ए एब्सोल्यूटली फेल्यूअर, स्टिल वो जो पाउण वाली वस्तु वो तुहाडे अपने ही पास है, तुहाडे अपने अंदर है। सो तुसी कुछ भी खोया नहीं है। डिप्रेस होने की, होपलैसनैस च जाने की तुहाडे लिए कोई गुंजाइश नहीं छड़ी, क्योंकि आखिरले दम तक वो वस्तु जो तुसी पानी सी वो तुहाडे अपने अंदर, आखिरले दम तक जदों चाहो उस पासे नूं अपनी डायरेक्शन तब्दील कर सकते हो। सो अगर असीं स्पष्ट तौर ते इतना ही गुरु बाबे दा उपदेश समझ लईए ते उसनूं धारण कर लईए कि असीं इस जन्म दे विच कुछ पाण आए सी अते ओ वस्तु जो पाण आए सी ओ साडे अपने अंदर है। हुण इह सवाल सानू पुछण वाला है कि असीं अपने अंदरों कुछ लभ्या है जां नहीं लभ्या। अगर असीं अपने अंदरों कुछ नहीं लभ्या तो फिर असीं चाले मूल गवाए, फिर असीं सब कुछ खो के इत्थों जाण वाले लोग हां। अगर असीं अपने अंदरों कुछ नहीं पाया, नहीं खोजिया, तो फिर असीं अंधले लोग हां। तो गुरु बाबा जी फिर सानू देख के हैरान होके ये शब्द उचार के इस तरह गायन करते हैं, अंधले क्या पाया जागाए, ऐ अंधे इंसान तू जगत च आके की पाया है, आओ सारे नाले गाओ, नाले अपने अपने अंदरों अपने अपने आप नू ये पुछो कि वस्तु जड़ी मैं पाउनी सी महाराज दसदे हन वो मेरे अपने अंदर ही है, उसनू मैं अपने अंदरों पाया है या नहीं पाया, जे नहीं पाया तो मैं की कर रहा हां, की करदा रहा हां, अगे नूं हुण मेरा की विचार है। आओ प्यार नाल सा

आखण कहण न थमिए, पाया कुछ नहीं, अंदर ही सी उसका पता भी नहीं लगा, उसने पाया ही नहीं, कुछ भी नहीं पाया। लेकिन गल बात करके देखो, हर बंदा आखण कहण न थमिए, गल बात दे विच ओ थमदा ही नहीं, चुप ही नहीं करता है। कहिंदे सानू ते इस अफसोस दे नाल गुमसुम हो जाना चाहिदा सी कि ए की हो गया साडे नाल, असी कुछ पाण आए सी, ओ साडे अपने ही पास सी, साडे अपने ही अंदर सी, असी उसनू पाया नहीं है, फिर असी केड़ी गल दा माण करिए। कहिंदे हन

तेरे अपने घर दे विच इतना रंग है, इतना स्वाद है, इतना टेस्ट है, इतनी खुमारी है, इतना सुरूर है, इतनी जॉय है। कहंदे हन की ना माने, उसनु तू मान क्यों नहीं लेंदी, थोड़ा जा यतन क्यों नहीं कर दी कि तू अपने अंदरली जो दुनिया है कि उसनु भी मान के देख। अपने घर हर रंगो, तेरा अपना घर कहंदे हन, बाहरों तेरी जिंदगी जो है वो बड़ी उदास है, बेचैन है, दुखी है, पर तेनू पता नहीं तेरा अपना घर अपना अंदर एक रंगीन दुनिया दे नाल भरिया पिया है। कहंदे हन कोशिश करके, मेहनत करके, हंबला मार के उस अपने अंदरले जगत नू क्यों नहीं मान लेंदी। अगे आखदे हन कहंदे हन

कहते कमलिए बाहर की ढूंढ रही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम बुलाए। जिहड़ा बाहर टोल रहा है वो परम दे विच भुलिया पिया है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं। सतगुरु बाबा जी आखते हैं सब कुछ तुहाडे अपने अंदर है, पर ए अंधले इंसान तू ए दस। फिर वापस उही सवाल आंदा है कि तू अपने अंदरों अंदरले जगत चो अपनी अंदरली दुनिया चो अपने ही अंदरों तू की पाया है। बस इस सवाल दा इस विचार दे नाल अगर कोई इंसान बेचैन नहीं हुंदा तो वह बहुत गहरी नींद दे विच सुता पे है। सुते पे बंदे नू जो मर्जी आखी जाओ उसते की असर हुंदा है? कोई असर नहीं ना हुंदा। कोई बंदा सुता पिया होवे उसके आले दुआले जो मर्जी कही जाओ उसते कोई असर नहीं हुंदा, उसनू पता ही नहीं लग्या की किया गया। या फिर कोई इंसान बिल्कुल बेहोश होवे उसनू कुछ किया जाए तो उसनू भी पता नहीं चलता, वो बेहोश है। या कोई इंसान कोमा च होवे तो उसनू भी कोई पता नहीं चलता कि क्या गया है। असी किस स्टेट ऑफ माइंड दे विच हां? अगर ते असी अवेकंड हां, जाग रहे हैं, सुरती च हां, सुते हुए नहीं हां, तो फिर की सानू ये गल बेचैन नहीं करेगी? कोई साडे अंदर सोच नहीं ले आएगी? कोई साडे अंदर फिक्र नहीं पैदा करेगी? कि गुरु नानक देव जी का यह शब्द है, गुरु नानक देव जी महाराज वर्गी हस्ती ये कह रही है कि अंधले क्या पाया जगाए, तो फिर भी राम ना बैठे रहिए। वो तो वह गल हुई जो बाणी च लिखी महाराज ने कि सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सारियां जान लिया सुन लिया फिर चुप कर गए, फिर आराम नाल बैठ गए। फिर भी तलाश ढूंढ खोज क्वेस्ट कोई भी आरंभ ना हुई, जिंदगी उसे तरह की ही रही। कि असि अजिहे लोग हां? गुरु बाबा जी गुरु नानक वर्गी शख्सियत यह आख रही है अंधले क्या पाया जागाए, मीन्स कि इस जगत दे विच आके कुछ पाना सी, तुसी वो पाया है या नहीं? फर्दर क्वेश्चन, महाराज जी वो पाउण वाली वस्तु किथे है? वो कहिंदे तुहाडे अपने अंदर है, तुहाडे अपने अंदर है।

हठ मजाहू मैं माण पिलदा। कहिंदे हठ मैंने हिरदा, अपने हिरदे दे अंदरों ही एक मैं ज्यूल कहिंदे प्राप्त कीता है, लभ्या है माणक लभ्या। मुल ना किदा, कहिंदे ए मैं मुल नहीं खरीदया, ए मुल विकदा ही नहीं है, अपने ही अंदर है। पर सतगुरु की गाइडेंस दे नाल, असिस्टेंस दे नाल, सतगुरु की आशीर्वाद दे नाल, उसकी कृपा दे नाल, कहिंदे सतगुरु दा बन के सतगुरु ने मेरे ते कृपा करके मैनू रस्ता समझाया, ढंग समझाया, ते ए माणक ए ज्यूल ए ट्रेजर कहिंदे मैं अपने हिरदे दे विचों लभ लिया। कमाल है वो जीवन, तन है वो जीवन, उस जीवन नू निमस्कार। जिना जिना ने कुछ प्राप्त किया उन्होंने अपनी बाणी च दसिया। गुरु अर्जन देव जी आखदे ने पाया लाल रतन मन पाया, अपने मन दे विच ही पा लिया। पाया लाल रतन मन पाया, पाया लाल रतन मन पाया। कहिंदे मैं लाल पा लिया, रतन पा लिया। स्वामी भगत बाणी दे विच आखदे हन, स्वामी रामानंद जी कहिंदे हन

गुरु अर्जन देव जी का मैं शब्द सुनाने लगा सी कि उन्होंने पाया है। हुण इस शब्द नू तुहाडे सामने एक एग्जाम्पल वजो रखण दा मेरा मतलब यह है कि यही स्टेट ऑफ माइंड गुरु अर्जन देव जी चाहते हैं, गुरु नानक देव जी चाहते हैं कि असी अचीव करिए। यही स्टेट ऑफ माइंड तो ओ सुनो, कहते हैं पाया लाल रतन मन पाया, तन शीतल मन शीतल थिया, सतगुर शब्द समाया। मेरा मन भी शांत ठंडा, तन भी शांत ठंडा। हुण बंदा कहे तन दे शांत का मतलब की है? एयर कंडीशन लगा के तन नू ठंडा किया है? नहीं, तन दे विच जड़ियां अग्गां बलदियां हन, तन दे विच कई किस्म दियां भुखां दियां अग्गां बल रहियां हन, डिजायर्स दियां अग्गां बल रहियां हन। कहिंदे ओ शांत हो गईयां हन, हुण तन सतौंदा नहीं है, तन परेशान नहीं करता है। ऑल द क्रेविंग्स हैव सीज्ड, तन बिल्कुल आराम च है। तन शीतल मन शीतल थिया, सतगुर शब्द समाया। सतगुरु दे शब्द दे विच मैं कहिंदे समा गया हां, एकमिक हो गया। फिर कहिंदे हन लाथी भूख त्रिशन सब लाथी। वो कैसी स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच लाथी भूख सब भुख लिथ गई है, त्रिशन सब लाथी, चिंता सगल विसारी, कोई चिंता नहीं रह गई। वाह, कितनी वंडरफुल स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिथे कोई चिंता नहीं रह गई। चिंता सगल विसारी, कर मस्तक गुरपूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। गुरपूरे ने मेरे सिर उत्ते हथ रखिया है ते मैं अपने मन नू जित लिया है। मन नू जितन दे नाल कहिंदे सारा जगत ही जितया जांदा है। मन जीतो जग सारी। तृप्त अघाए रहे रिद अंतर, कहिंदे तृप्त अघाए रहे रिद अंतर, रिद अपने हिरदे दे अंदर रहना हां, डोलन ते अब चूके, कहिंदे हुण डोलना खत्म हो गया है। अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नाही रे मूके, कहिंदे ओ खजाना अंदरों मिलिया है जिस दे विच कदे तोट आ ही नहीं सकी। अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नाही रे मूके। ओ अवस्था है, ए अवस्था है जड़ी गुरु बाबा जी सानू चाहते हैं कि असा अपने ऐस जीवन च पा के जानी सी। ताई ते क्या है कि तुसी पाया की है, अंदले क्या पाया जागा है, अपने अंदरों ये प्राप्त होनी सी। सो असी अज दे इस कीर्तन दे विच जो कुछ सुनिया है इस उत्ते रिफ्लैक्ट करना है कि सचमुच असी अपने जीवन दे विच अपनी अंदरली दुनिया दे विचों कुछ पा के जा रहे हैं जा हाले तक खाली ही बैठे या खाली ही बैठे हैं। और वो है सब कुछ इस काया दे विच ही। ता दास ने काया दे उत्ते कीर्तन शुरू कीते सी तन दे उत्ते बॉडी दे उत्ते कि सानू पता लगे कि गुरु महाराज जी ने साडी बॉडी दे मुतलक, इस काया दे मुतलक, इस देही दे मुतलक की कुछ आख्या है। आप जी नू मैं तीन नुक्ते सुना चुका हां। नंबर एक, दुर्लभ है एक काया, क्योंकि इस काया दे अंदर ही वो दुर्लभ वस्तु है जो असी पाउणी है। दूसरा, एक काया मंदिर है, अकाल पुरख वाहिगुरु इस दे अंदर निवास करता है। तीसरा, एक काया रब दी पत्नी है। ज्यो ज्यो इसनू अकाल पुरख वाहिगुरु तो दूर ले जाओगे पत्नी का जीवन घुमला जाएगा, बीमार हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, उदास हो जाएगी। अज एक चौथा नुक्ता आप जी के सामने रखता हां। गुरु महाराज जी आखते हैं कि जो कुछ सारे ब्रह्मंड दे विच है वो सारे का सारा इस काया के अंदर है। कहते हैं

कितना स्पष्ट किया है कि वो अवेलेबल है, वो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कोई उसनु खोजन की कोशिश करे। इम्पॉसिबल नहीं है, जो खोजे सो पावे, वो जरूर पाएगा जो खोज करनी शुरू करेगा। कहते ओ शक्ति, ओ महान मिस्टीरियस वस्तु जो सारे जगत की रचना नु रचदी है, बनाउंदी है, सवारदी है, शिंगारदी है, प्रतिपालदी है, सबना दे अंदर जीवन जो भरदी है। कहिंदे ओ अकाल पुरख वाहिगुरु दी होंद, ओ अकाल पुरख जो सारे खंडा ब्रह्मंडा दे विच मौजूद है, उतना ही उतना जितना सारे जगत मौजूद है इस देही दे अंदर मौजूद है। जो खोज है सो पाव, जो उसनु खोजन की कोशिश करेगा वो उसनु अवश्य पा लेगा। चौथा नुक्ता यह है, वो उसनु प्राप्त कर लेगा। हुण असी यह देखना है कि असी इस बॉडी दे विचों की खोजया है, की लभ्या है, की पाया है। पंजवा नुक्ता, गुरु महाराज जी आखदे ने ये जिहड़ी देही है एक घोड़ी है, भाव कि यह वहीकल है, अते इस देही दे द्वारा ही, इस ह्यूमन फॉर्म दे द्वारा ही तुसी उस पॉइंट तक पहुंचना है जिथे वो ट्रेजर है। जे ये देही ना होवे, ह्यूमन फॉर्म ना होवे, तो तुसी वो वस्तु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस तक पहुंचन दे वास्ते इस देही ने ही तुहाडी हेल्प करनी है, इस तो तुसी कम लेना है। कहिंदे हन एक घोड़ी है, इस उत्ते तुसी ट्रैवल करना है, तुसी इस दे मास्टर हो, तुसी इस दे ड्राइवर हो, तुसी इस दे संचालक हो, तुसी इस नूं चलाण वाले हो, अते इस दी लगाम तुहाडे हथ विच होनी चाहीदी है। पर ऐसा ते नहीं है, ऐसा नहीं है। कई दफा जो नहीं बोलना चाहुंदे, जो नहीं बोलना चाहीदा, वो असी बोल जाने हां, वो फिर क्यों बोल हुंदा है? जो नहीं करना चाहिदा वो असी कर जाने हैं, तो जो करना चाहिदा है वो असी नहीं करते। तो असी देही दे मास्टर नहीं हां कि असी इसनु अपनी मर्जी दे नाल जो वर्तीए, असी इस इंस्ट्रूमेंट दे गुलाम बन गए हां, सेंसेस दे गुलाम बन गए हां। इंद्री सबल निबल बबेक बुद्ध कर कल दे कीर्तन च आखी से पंक्ति के इस दियां इंद्रियां बलशाली हन, हुण ओ धुई फिर दियां हन, ओ खिची फिर दियां हन सन। ओ गल हो गई है कि सवार नू हुण घोड़ी खिची फिर दी है, धुई फिर दी है, ओ सवार दा हाल तुसी देख लो की होएगा। घोड़ी किसे दे पास होवे, ओ उस उत्ते सवार हो जाए, फिर उसनू ए ना पता चले कि घोड़ी ने हुण उसनू किधर लैके जाना है, वो उसनु रोकना चाहे वो रुके ना, किसे खड्डे च डिग के ही मरेगा। गुरु बाबा जी आखदे हन इसनु अपने कंट्रोल दे अंदर ले आओ, इस दे मास्टर बनो, ते इसनु उस पासे वल जाण नु वरतो जिस पासे वल जाण नु तुहानू हदायत कीती जांदी है, उस ट्रेजर लैंड नु जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, जिथे खजाना है वो तुहाडे अपने ही अंदर है। कहिंदे हन इस देही दे विच ही है, इस देही तो बिना उसनु पाया नहीं जा सकता। सो इस देही नु विगड़न ना दियो, कदे इस दे स्वभाव विगड़न ना दियो, इस दियां आदतां विगड़न ना दियो, इस दी एनर्जी नु वेस्ट ना करो, इसनु गलत आदतां ना पाओ, क्योंकि ये तुहाडी ट्रांसपोर्टेशन है। अगला नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे हन कि ए जो देही है, छेवा नुक्ता, सब तमाम जूना तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, सुपीरियर है। आप जी ने एक पंक्ति सुनाना, आज गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों महाराज जी ने लिखिया है, बहुत ध्यान नाल सुनना। सब माया मोह शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई। ये हुण मेरी अर्ज है कि यूएसए दे विच जां होर जिथे भी कीर्तन का मौका मैनू मिलिया है, कोई खास पंक्ति हुंदी है तो मैं वो सारी संगत नूं बुलाना हुंदा, सारी संगत उसनूं बोले, ताकि दो चार दफा बोलन नाल वो पंक्ति याद भी हो जाती, क्योंकि वो बहुत ही एक खास पंक्ति हुंदी है। तो आप जी दास तो बाद अद्धी तुक मैं पहला बोलांगा, फिर मेरे कहन तो बाद आप सारे बोलो, तो ये पंक्ति आप नूं याद हो जाएगी। सब माया मोह
शरीर हर किया विच देही मानुख भगत कराई। एक दफा फिर, सब माया मोह शरीर हर किया विच देही मानुख भगत कराई। इसका अर्थ यह है, सब माया मोह शरीर हर किया, और जितने भी शरीर हन पशुओं के शरीर, कीड़े मकौड़ियां के शरीर, पानी च रहने वाले जीव जंतुओं के शरीर, उड़न वाले पंखियों के शरीर, भाव के जितनिया भी फॉर्म्स हन, जितने भी शरीर हन, कहिंदे उन्हां सारिआं दे विच माया मोह है। वो सारे गुण जड़े मोह, ममता, क्रोध, ठगी, इतआद, वैर, मेर, तेर, अपना, बिगाना, ये सब कुछ बाकी तमाम शरीरां दे विच है, अते वो सब कुछ इस शरीर दे विच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर उन्हां सबना नालों उत्तम है। सब माया मोह शरीर हर की है। ऐ जितने भी साडे सुभा हन, कहिंदे हन इह कोई तुहाडे नहीं हन, ममता, मोह, अटैचमेंट, जो ईरखा, वैर, ये सब कुछ जो है माया मोह सारे बाकी शरीरां दे विच है, पर मनुखी शरीर दे विच जो सिग्निफिकेंट गल जड़ी है वह की है, कहिंदे हन विच देही मानुख भगत कराई। विच देही मानुख भगत कराई, कहिंदे मनुख दी देही दे विच, कहिंदे हन एक ही गल दी विशेषता है कि इस देही दे विच भगती हुंदी है, इस देही दे विच भगती कीती जा सकती है, इस करके ए देही जिहड़ी है सब तो ज्यादा सुपीरियर फॉर्म है, सब तो ज्यादा उत्तम है। गुरु महाराज जी कहिंदे हन, अवर जोन तेरी पनहारी, बाकी सारिया जूना तेरा पानी भर दिया हन, तेरिया गुलाम हन, तेरिया दास हन, तू जो चाहे उन्हां तो करवा सकदा है, हाथियां नू नचा सकदा है, शेरां तो तू डांस करवा सकदा है, हर जून जो है उसनू तू जिमें चाहे वरत सकदा है, तेरा पानी भरन गिया। कहिंदे हन अवर